का जो क्या हो चुका है उसमें क्या है जैसे संस्कार जब जीवन बढ़ता है।

आस प्यासी सेजे आवा आगे से बावा के न भावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन बिन रे।

अपनी खलकत दी इन्नी वड्याई नहीं कीती जिन्नी वड्याई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने की। मैं रहा इथों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े, सारे झाती पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे, जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वो भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उहनां दा पालना किन्ना कु उच्चा, असीं किते पहुंच भी नहीं सकदे उत्थे। ओह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े, सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के ला ले, लाउणा किसे, किसे गुरुद्वारे दी कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा, वह भी गुरु नूं पहुंचदा। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, इह भी गुरु नूं पहुंचदा।

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकिया जे एक जन्म दा होवे सुभा तो बदल लईए कईआं जन्मां तो यही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना

ने असिस्ट तीसरी फरीद एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कहीं सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। रब ते प्यारियां दी निशानी है जे घर विच दुख आ गया ता परमेश्वर दी रजा समझ के पाना मिठा करके मनदे हन। जे परमेश्वर ने खुशियां भेज दित्तियां ता उना खुशियां विच अहंकार नहीं करदे।

चेतन दृष्ट ध्यान धर दर्शन दृष्ट ध्यान धर गुर मूर्त होई दर्शन दृष्ट ध्यान धर गुर मूर्त

ज्ञान होया भगत सदना जीव के हुण मास विच ना छोड़ दिता एकाग्र चित होके प्रभु भगती विच लग गए ते मन विच इच्छा होई के जगन्नाथपुरी जाके प्रभु दे दीदार करिए यात्रा करके आइए। आप तुर पे रस्ते विच रात पै गई मन विच सोचिया भई चलो कितों पुरुषार्थ करके प्रसाद छक लैंदे हां जां शहर विच गए एक घर जाके बेनती कीती एथे एक मुटियार खड़ी।

गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां।

सुनर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना। सुनर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस।

राह चले है पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना।

शब्द है कानड़ा महल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टक साल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी होवेगी, मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा होवेगी किरपा। पर मन जाप हो राम गोपाल, उस सृष्टि नू पालन वाला जिहड़ा जर्रे जर्रे च है, उन्हूं मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जाप हो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़तक साल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतर है तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकता, सब आखो सतनाम। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकता। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती है। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जो आओ मिया जी, तू सुल्तान कहा हो मिया। एक बादशाह नू क्या जाए मिया जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होण तक हो रही है ना वो इन्हीं की है कि किसी बादशाह नू मिया किया जाए। तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमर वडाई। इस शब्द विच महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम धन माल। जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहा निहा निहा। हुण इसका कीर्तन इस सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय दी यह रीत है। गुणका वालों हुक्म होया सी ये असी रीत कल बचन किया। सरदार प्रहलाद सिंह जी सास सुरेंद्र सिंह होर ने यह असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवका ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना। असी इस वास्ते ये आपकी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਿੱਟਾ ਹੈ।

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार देन, जिन्हां अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी दा बलिदान दिता हिंदू धर्म दी रखिया वास्ते, अपने बच्चियां नूं कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नूं वारी वारी मौत दे मुंह च धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण अते फिर जिहड़ा महापुरश शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहिब जी उस आदमी नूं जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुत्ता पिया सी उस नूं वैरागमय नींदर तों जगाउण आए, ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तों पहला कदी उस दा नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तों पहला उस दे माता पिता उस नूं लक्ष्मण देव कहिंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इस नूं वैरागमय नींदर तों जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुट्टिआ पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी ओहदे पेट विच

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बैठ

जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे, तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गए। लाओ लश्कर भी नाल है, ओदे चेहरे अगे किसे दी अखां नहीं हुंदियां। ता माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा, दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है, मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां। पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

जिस वक्त अपने आश्रम विच पहुंचिया तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

तू कौन है? ता माधो दास बैरागी चरना नु चुमदा होया कहन लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा, मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब हुई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधुदास नु उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल किया, जानदे हुए भी पुछदे ने तू बैरागी क्यों बनिया। ता माधुदास ने अपनी कहानी सुनाई, एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, ओ मरी, ओ दे बच्चे भी तड़प

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पए ने जुल्म पै कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी।

बंदा सिंह बहादुर नूं बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा पहला नाम माधोदास बैरागी पर हुण बंदा सिंह बहादुर बना के अपना सिख बना के

दुष्ट दोखियन पकर पछारू। ऐ बंदा सिंह जिथे जिथे भी धर्म दे दोखी हन उन्हां नूं जाके सजा देओ।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी।

आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ़ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए। सारे लोग इउं नसण लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया